0: का का बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

सामने जाग जाग की ऐसी भागम भार के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई।